मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया है, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाएं। अब मीराबाई का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
0: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

की इस नजाकत पे हमको एक शेर याद आ गया, सुन लीजिएगा तो अच्छा होगा, कि जान मेरी रूठ मत, आशिक हूं तेरा प्यार दे, अपने इन नाजुक लबों का एक बोसा यार दे, छोड़ दे गुस्सा। क्या कह रहे हैं? छोड़ दे गुस्सा, बहुत अब दिल दुखाई हो चुकी, आओ लग जाओ गले, बस अब लड़ाई हो चुकी।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨਕਨਤੀ ਲੈ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕਨਸ ਲਾਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂ

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

0: दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मुस्कुराहटों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहतो भरा खुलूस की अता गहराइयों से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा और आपका आज का दिन और आपके पिछले दो हफ्ते, जी हाँ जी, खैरियत से गुजरे होंगे। आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह अपने काम काज और ज़िंदगी की मसरूफियात से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दो हफ्ते तक गैर हाजिर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीद करती हूँ कि आप हमें भूले नहीं होंगे। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। आपकी सलामती और खुशियों के लिए हम हमेशा ढेरों दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को हर नेमत और हर खुशी से सरफराज फरमाए और जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं वो कभी ख़त्म ना होने पाए। आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे और अल्लाह पाक की रहमत के साए तले हमेशा आप रहें और कदम कदम पर अल्लाह पाक आपको सुख, सेहत, राहत और सुकून अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां, सख्तियां, बीमारियां और मुश्किलात को दूर फरमाए, रफा करे। आमीन। सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के साथ अल्लाह पाक और वसी रिज्क अता फरमाए और आपको दायमी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। सामिन, हमारी और आपकी मुलाकात होती है फ्राइडे को 11 और 2 के दौरान, लेकिन पिछले दो हफ्ते हमारी गैर हाजिर रही थी, कुछ तबीयत की नासाजी थी और कुछ मुहर्रम की वजह से भी। आप जानते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमान जो थी वो अफसोस में थी और किसका जी चाहता है कि गीत सुने या गीत सुनवाए जाए। तो इसी वजह से दो हफ्ते आपके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। सेहत अभी भी 100% ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मुलाकात का जी चाहा, आपसे मिलने को जी चाहा, आपको बहुत मिस किया, इसलिए फिर आपसे मिलने के लिए एक बार फिर आन बैठे हैं। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है आपके साथ मिलजुल कर चंद लम्हे बिताने का। हमेशा आप हमारा साथ देते हैं और ये दुआओं का, मोहब्बतों का, चाहतों का और यादों का सफ़र होता है। आपका साथ हमें मिलता है और आपके संग संग ये सफ़र हम तय करते हैं। आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं कि आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा और आपके संग संग ये सफ़र हम तय करेंगे। तो हमेशा की तरह यादों भरे गीत होंगे, यादों का सफ़र होगा, आप हमारे हम सफ़र होंगे और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे हम 2 बजे तक। उससे पहले आपको हिट ऑफ द आवर सुनवा देते हैं और हिट ऑफ द आवर के बाद प्रोग्राम का जो है जिस सिलसिला यादों का सफ़र का जारी करेंगे।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: नजरों का तीर कहीं दिल के पार हो न जाए, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। बहुत ही खूबसूरत दो गाना हिट ऑफ द आवर में आपने सुना। आपको टाइम बताते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 11:15 और है ब्रेक टाइम।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
5: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
4: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
5: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
4: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.

ये भी क्या जीना है, ये भी क्या मरना, यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना। लता जी की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं कालदेल और इर्द-गिर्द के इलाकों में। डीएबी के जरिए आप सुनते हैं केसली, इलक्लिस, किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन केन्स में भी बहुत जल्द आप हमें सुन पाएंगे। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ। यादों का सफ़र है, आप हमारे हम सफ़र हैं, आप आ रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। यादों की गाड़ी में आप हमारे संग संग चलने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का, आप भाइयों का, आप बहनों का, जो कि हमेशा अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते हैं और हमारा साथ निभाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारे संग संग ये सफ़र तय करते हैं। हाजरा जी, आपकी कॉल मिस होगी, कोई बात नहीं, अभी अभी तो आए हैं, अभी बहुत वक्त है, इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर होगी। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। हमारे बहुत ही अच्छे और हमारे प्यारे से छोटे भाई वाजिद भाई, आपसे बात हुई हमेशा की तरह, आपने हमें मिस किया, हमने भी आपको बहुत मिस किया। आपने ढेरों दुआएं दी हैं हमें भी, सनराइज़ की टीम को और तमाम सामीन को भी, अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है और हमेशा की तरह ढेरों ढेरों दुआओं के साथ आप आते हैं और ढेरों दुआओं के साथ जाते हैं और फिर आपकी इल्तिजा होती है कि हम भी और हमारे सामीन भी आपके लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह आप हमेशा हमारी दुआओं में होते हैं और रहेंगे। अल्लाह पाक बहुत जल्द आप पे रहम करेगा और आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदलेगा। ये हमारी दिली दुआ है, बस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और उसी पे छोड़ देते हैं सब कुछ। वो जो भी करता है बेहतरी के लिए होता है। सब्र कीजिए, हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह आपकी तकलीफात जो है बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ साथ हैं। ये प्यारा सा गीत आप तमाम सामेन के लिए, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा।

जैसे सावन से प्यासे घटा छाके मिले। किशोर कुमार और लता जी की खूबसूरत आवाजों में खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, और अब हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक।

हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 FM पे और 100.32 FM पे आप सुनते हैं क्रॉस यॉर्कशायर और DAB के जरिए आप सुनते हैं केतली इल्कली स्किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नी डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन किन्स में भी हम आने वाले हैं और इसके अलावा आप हमारे फ्री ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और 24 घंटे जब चाहें जहां चाहें बेशर्ते कि आपके पास इंटरनेट है तो आप सुन सकते हैं सनराइज रेडियो को। मैं हूं शहनाज मंसूर आपके साथ साथ रहूंगी दोपहर 2 बजे तक पुरानी सदाबहार गीतों के साथ पुरानी यादों के साथ पुरानी आवाज़ों के साथ। आपकी डेडिकेशंस भी होंगी आपके पैगामात भी होंगे। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें हमारे गीतों के साथ अपने नाम को या अपनों के नाम को जोड़ना चाहें तो नंबर रहेगा 01274 3066666।

करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। मुकेश और लता जी की आवाजों में यह बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। शहनाज मंसूर आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी हम सफर यादों के सफर प्रोग्राम में आपके साथ साथ दोपहर 2 बजे तक आपके पैगामात के साथ और आपकी डेडिकेशन के साथ आपके संग संग ये सफर हम तय करेंगे 2 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का जो कि हमें मैसेजेस कर रहे हैं और जिनसे बातें भी हुई, आपका बेहद बेहद शुक्रिया यादावरी का, दुआओं का और हमारा साथ निभाने का। समीना जी बेहद शुक्रिया आपका मैसेज मिला, आपने ढेरों दुआएं भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है सनराइज़ की टीम को और तमाम सामेन को जो इस वक्त सनराइज़ की नशरात को सुन रहे हैं। और इसके अलावा मिस्टर मिसेस हुसैन आपकी जानिब से भी तमाम सामेन को, सनराइज़ की टीम को और हम सबको आपने ढेरों ढेरों दुआएं भेजी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा है और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ही नशोकत, आपका मैसेज भी पढ़ा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी सभी को दुआएं भेजी हैं और दुआओं के साथ साथ आपने जुमा की भी ढेरों ढेरों ढेरों मुबारकबाद पेश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि सनराइज़ को सुन रहे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे हम सफ़र हैं और हमारे साथ साथ हैं, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं हमेशा और आज भी आपके साथ साथ बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। तो जल्दी से बढ़ते हैं, ये खूबसूरत सा गीत यादों भरा गीत आपको सुनवाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। लट उलझी है सुलझा दिल मोरे बाल में, मलका इतरो नूर झा रहे हैं आपके लिए।

एक छोटा सा ख्वाब था जो पूरा ना हुआ। एक छोटा सा ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ। वो शख्स मेरा होकर भी मेरा नहीं हुआ। आज भी याद करते हुए रोता हूँ, क्यों किसी और का हुआ और मेरा नहीं हुआ। यादें बहुत हंसी थी हमारे सफ़र की, यादें बहुत हंसी थी हमारे सफ़र की, न जाने क्यों वो मेरा हम सफ़र नहीं हुआ। बहुत कोशिश की कि जी लूँ उसके बगैर, बहुत कोशिश की कि जी लूँ उसके बगैर, पर न जाने क्यों मुझसे सब्र ना हुआ।

दिल में जितने जख्म हैं उनमें तेरा ही अक्स उभरता है। बहुत ही खूबसूरत दो गाना आप सुन रहे थे 103.2 FM पे, और अब ये घंटा इख्तिताम को पहुंच चुका है। आप सुनेंगे जी हाँ जी 12 बजे की इंटरनेशनल न्यूज़, और मिलेंगे आपसे न्यूज़ के बाद।

तेरे नाम किया है हमने सारा जन्म। बहुत ही खूबसूरत गीत उदित नारायण की बेहद खूबसूरत आवाज़ में हिट ऑफ द आवर में आपने सुना। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। आप सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 FM पे। आप सुनते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में और डर्बी के इर्द गिर्द के इलाकों में। इसके अलावा आप डीएबी के जरिए हमें सुन पाते हैं केथली, इल्कलिस, केप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नी, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने कदम रखा है, आन पहुंचे हैं। आपको एक बार फिर से खैर मकदम है, आपका खुश आमदीद, वेलकम, जी आयानो एंड गुड आफ्टरनून। जुमा की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। आप तमाम साथियों का, बहनों का, भाइयों का शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, हमारे हम सफ़र हैं और हमारे साथ साथ हैं इस सफ़र में, यादों की गाड़ी में, और इंजॉय कर रहे हैं पुराने सदाबहार गीतों को, पुरानी आवाज़ों को और अपनी यादों को, आपकी यादों को ताज़ा करने हम आए हैं यहाँ पर, आपके मनपसंद गीत लेकर, आपके मनपसंद आवाज़ें लेकर, और आपके साथ साथ रहेंगे और आप ही के साथ ये सफ़र तय करेंगे। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ साथ आगे बढ़ना और आपके साथ साथ ही हमने पिछला घंटा बिताया। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकातें हुई, आपसे बातें हुई, आपके पैगाम मिले, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ हैं और आपकी दुआएँ हमारे साथ हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है और यूँ ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्यारा सा गीत आप तमाम के नाम है और उसके बाद हम जो है वो डेडिकेशन का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं।

0: साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी फूलों में ढूंढूं तो कभी कलियों में। लता जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। अब आपको टाइम बताते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 12:15 और लेंगे छोटी सी ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं।

तेरे कुछ में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा। मोहम्मद रफ़ी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़, हम सब की मनपसंद आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन पाते हैं पूरी दुनिया में। 100.6 FM पे आप सुनते हैं हमें अक्रॉस यॉर्कशायर, वेस्ट यॉर्कशायर और DAB के जरिए ब्रेडफोर्ड, लीज, केथली, स्किप्टन, इल्कली, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और विल्सन किंग्स में भी आप सुन पाएंगे बहुत जल्द। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ, पुरानी यादों के साथ। यादों को याद करने आते हैं हर फ्राइडे को और आपके संग संग इंजॉय करते हैं यादों को याद करना। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी यादें भी ताज़ा होती हैं हमारे संग संग और आप उन्हें इंजॉय करते हैं और आपका दिल खुश होता है तो हम भी बाग बाग हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का जो कि प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं और हमारे हम सफ़र हैं और आपके साथ साथ हमेशा बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। हमारी बात हुई थी बहुत ही प्यारी सी बहना सायरा जी आपसे, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। आप हॉलीडे से वापस आए हैं अपने बच्चों से मिलकर, बहुत खुश सुनाई दे रही थी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और यूं ही आपका साया आपके बच्चों के सर पे हमेशा कायम रहे और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करती रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपने सनराइज़ की तमाम टीम को और जो भी सुन रहे हैं सनराइज़ को इस वक्त हमारे सामने, उन सभी को दुआएं भेजी हैं, जुम्मा की मुबारकबाद पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस कर बहना आपकी कॉल मिस होगी, जिसके लिए माजत चाहती हूँ, जब्बार भाई आपकी कॉल भी मिस होगी, माजत चाहती हूँ, वो भी बहुत वक्त है। अगर आपके पास वक्त है, आपको वक्त मिले तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। समीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम को सुन रही हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर रही हैं हमेशा की तरह, बहुत अच्छा लगा, आपका भी बेहद बेहद शुक्रिया। हमारे प्यारे से भाई नईम बगदादी भाई लाहौर में हैं, हमेशा अपनी दुआओं से नवाजते हैं और हमारी हौसला अफजाई भी करते रहते हैं और हमें याद दहानी भी दिलाते रहते हैं, पुराने सदाबहार गीत जो कि उन्हें अच्छे लगते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, आशा जी की आवाज़ में और लता जी की आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप हमेशा मुझे भी गीत भेजते रहते हैं व्हाट्सअप पे, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपका पैगाम मिला आज भी और जुमा की मुबारकबाद आपने दी है, आपको भी जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर दुआएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी है। ये प्यारा सा गीत जो है, जी हाँ जी, आप तमाम के लिए है जो भी इस वक्त सनराइज की नशरात को सुन रहे हैं। आपकी डेडिकेशन का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं थोड़ी ही देर में, जी हाँ जी।

जब खामोश आंखों से बात होती है, जब खामोश आंखों से बात होती है, ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है। तुम्हारे ही ख्यालों में खोए रहते हैं, पता नहीं कब दिन और कब रात होती है।

दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत ही खूबसूरत दो गाना, हम सब का मनपसंद फेवरेट गीत और हम सब की मनपसंद आवाज़ों में हमने सुना, हमने भी एंजॉय किया और आपको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। ये आप ही के लिए था हाजरा जी, और आपके लिए था साहिरा जी, आपके लिए था, और इसके अलावा ख़ास तौर पर हिना शौकत, आपको अच्छा लगा तो आप ही के लिए था, आने वाले गीत भी आप ही के लिए होंगे। फिलहाल तो कोई और हमारा इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ जी, ब्रेक लेनी है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: तूने,
1: तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना 103.2 FM पे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ और आपके डेडिकेशंस का सिलसिला शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं, जी हाँ जी, अपने प्यारे से भाई वाजिद भाई का, जिन्होंने आज प्रोग्राम में सबसे पहले शिरकत की थी। आपके नाम ये आने वाला गीत और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम जिनमें शामिल हैं, आपके दोस्तों में शामिल हैं आमिर शहजाद हैं, महबूब इलाही हैं और चौधरी फरियाद हैं, शकील भाई बर्लिन में हैं और परवेज़ ख़ान हैं, इसके अलावा चौधरी मुजफ्फर हैं, अब्दुल कयूम है फ्राइजिंग हॉल में, अयुब चौहान हैं, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं और तारिक सूफी भाई हैं और हीरा खान जी हैं। इन तमाम के नाम आपकी जानिब से ये प्यारा सा गीत और हमारी जानिब से हमारे तमाम सामेईन के नाम। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप सबको ये गीत अच्छा लगेगा और आपको पंजाबी का गीत पसंद है वाजिद भाई, तो ज़रूर पंजाबी का गीत भी आपके नाम ज़रूर लगाएंगे, सुनते रहिएगा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्यारे से भाई, जी हाँ जी जी, मैंने नाम लिखना भूल गई थी, चलिए अभी मैं कंप्यूटर चेक करती हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हाजरा जी आपका, आपसे बात हुई बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। आपने तमाम सामीन को, सनराइज़ की टीम को दुआएं भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है और हमारी प्यारी सी बहन अजीत कौर जी, आपसे भी बात हुई बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह, हंसता आप हंसती मुस्कुराती हुई आई, इतनी आपकी परेशानियां और तकलीफ़ों के बावजूद आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हिम्मत दे, सब्र दे और यूँ ही जो भी परेशानियां आप पर आई हैं अल्लाह पाक उनकी आपको हिम्मत दे, अता फरमाए कि आप उनका मुकाबला कर सकें और बहुत जल्द ठीक हो जाएँ। आपके लिए ढेरों दुआएँ हैं। और इसके अलावा मिस्टर मिस हुसैन आपके पैगाम भी हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी सुन रही हैं। आप तमाम के नाम गीत आएंगे, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो को और संग संग रहिएगा। ये प्यारा सा गीत आप तमाम के लिए है। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के,

मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर, तुम्हें पाना है ज़रूर। ये हुई ना बात, वो कहते हैं ना कि हिम्मत हो तो कुछ भी मिल जाता है, हिम्मत मरता मदद खुदा। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही प्यारी आवाज़, दिल को मोह लेने वाली आवाज़, हम सब की मनपसंद आवाज़, लता जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप तुम्हारे प्यारे प्यारे सामीन के लिए हमने पेश किया, आपके गोशे गुजार की, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। बहुत ही प्यारी सी बहन मिसेस कौर जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, गीत आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गीत हम लगाते हैं आपको बहुत पसंद आते हैं, आपकी यादें ताज़ा होती हैं और आपको अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आकर आप हमारे गानों की, हमारे गीतों की तारीफ़ करती हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है और हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमें आपने प्यार से नवाजा, अपनी दुआओं से नवाजा, सभी के लिए आपने ढेरों दुआएँ भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए पंजाबी का गीत हम ज़रूर ढूंढ कर लगाते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। बढ़ते हैं एक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, एक और खूबसूरत सा गीत है जिसे मैं नाम करना चाहूँगी हमारे प्यारे से भाई, जी हाँ जी, साजिद महमूद भाई, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी बहन को और सनराइज़ की तमाम टीम को दुआओं से नवाजा, सभी के लिए दुआएँ भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आने वाला गीत आपके नाम और हमारी जानिब से ये गीत हम नाम करेंगे नईम बगदादी भाई, लाहौर में हैं, आप उनके आपके नाम करेंगे, हिना शौकत आपके नाम करेंगे, मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम करेंगे, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा।

0: मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। अब आपको टाइम बताना है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है, जी हाँ जी, 12:46।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down.

परस्तिश की तमन्ना है, बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। जी हाँ जी, महिंद्रा कपूर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। और अब आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुरिंदर कौर और आशा सिंह मस्ताना के आवाज़ों में है। ये प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, प्यारी सी बहन मिसेस कौर आपके नाम करना चाहेंगे, यही गीत मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम करना चाहेंगे, और यही गीत अजीत कौर भैरा आपके नाम करना चाहेंगे, और आपके साथ साथ यही गीत हम करना चाहेंगे हिना शौकत आपकी जानिब से एजाज के नाम, उस्मान के नाम और शौकत भाई के नाम। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मुझे उम्मीद और यकीन है कि सामीन आप भी इसे पसंद कर

0: वास्ते मेरा दिल दे मेरुमा छेती करा, हम तो आशा सिंह मस्ताना का इंतजार ही करते रह गए, वो तो आए ही नहीं। ये गीत सिर्फ सुरिंदर कौर की आवाज़ में आपने सुना। वैसे हमारा कंप्यूटर जो है ना वो कभी कभी हमसे मजाक कर जाता है, यहाँ पे लिखा था कि आशा सिंह मस्ताना जी भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, कोई बात नहीं। आपने सुरिंदर कौर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत सुना जो कि ख़ास तौर पर प्यारी सी बहना मिसेस कौर आपके लिए था। मैंने एक और गीत सुरिंदर कौर की आवाज़ में क्यों करके रखा हुआ है जो कि मैं आपको अगले घंटे में सुनवाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया याद आवरिका। और ये जो गीत है ये हमें ले चलेगा 1 बजे की इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब, और न्यूज़ के बाद आपको हम तीसरे जो आखिरी घंटा है उसमें हमारी आपसे मुलाकात होगी, और जो यादों का सफ़र है ये जारी रहेगा, आपके डेडिकेशंस भी और आपके पैगामात भी। हम जो है हवा के दोष पे आपके कानों तक, आपके दोस्तों तक, आपके चहेतों तक पहुँचाते रहेंगे। आप भी अगर प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो नंबर वही है 01274306666 डेडिकेशंस के लिए। और जो साथी आ चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आ रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और जिनसे बात नहीं हो पाई उनसे माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश कीजिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर से पहले पहले आपसे बात हो जाए। आपने कोशिश की, आपका नाम हमने लिख लिया, गीतों के साथ हम आपका नाम ज़रूर जोड़ेंगे। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, साथ निभाइएगा। मैं हूँ शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूँ पूरे 2 बजे तक। जी हाँ जी, हर फ्राइडे को हमारी और आपकी मुलाकात होती है 11 और 2 के दौरान। यादों का सफ़र होता है, आप हमारे हम सफ़र होते हैं। आज भी आपका साथ, आपका प्यार हमें मिल रहा है, आप हमारे साथ साथ यादों की इस गाड़ी में सवार हैं और इंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 1, police say they're anxious about getting the resources needed to ensure pubs can safely stay open until 5 a.m. during England's overnight World Cup match with Mexico. The government's changing licensing laws in England and Wales because the game kicks off at 1 a.m. on Monday. Andy Trotter, a former senior Met police officer, says the last minute change can't happen again.
3: Everyone could have calmly gone through the issues, made sure that everyone's looked at the various risks involved and did their very best to ensure that everyone has a happy and enjoyable time. So it's a little unhelpful for it to be at such a last minute, particularly when government said they weren't going to do it and then they said they would do it.
2: While hospitality groups say they're over the moon at the decision, authorities in Monaco say their main suspect in a bomb attack is a Ukrainian woman who disguised herself as a man. 39-year-old Anastasia Berezovska is thought to have travelled from Germany by car. Andy Burnham says he'll stick by Labour's 2024 general election manifesto when he enters number 10, but the Prime Minister in waiting believes there is some room for movement on tax. The countdown is on as Taylor Swift is due to marry NFL star Travis Kelce in New York later. All eyes are on Madison Square Garden, where the pair are reportedly hosting their nuptials. Hundreds of celebrity guests apparently turned up for a dress rehearsal last night. Fan Alison Romero is flying from London to New York.
4: Yes, I'm so excited. I've been a fan for 17 years, and I'm just so happy that she's found the love that she's always wanted. He seems really supportive of her. She's so successful to find a man who's not threatened by that, and I'm just so happy for her that it feels like my best friend, my older sister, is getting married.
2: Prince Harry's team say they're still looking at security options for a potential visit to the UK this month. He was reportedly thinking of cancelling the trip over a lack of taxpayer-funded protection. And rehearsals have begun for the Commonwealth Games opening ceremony in Glasgow. It's 20 days until the show. That's the latest. I'm Cam Hall.

एक दर्शन करना सजना दा दीवानी फिर दी गली गली जफर इकबाल की आवाज में हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड कीसली इल्कली स्किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में भी बहुत जल्द सुनने वाले हैं आप हमें मैं हूं शहनाज मंसूर आपके साथ हूं दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ यादों का सफर है और आप हमारे हम सफर हैं हमेशा की तरह आपके साथ-साथ प्रोग्राम के तीसरे घंटे में आन पहुंचे हैं आपके साथ का आपके प्यार का आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपका साथ आप अभी तक हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ-साथ आगे बढ़ना आपको प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में भी खुशामदीद वेलकम जिया यानी कहती है आपकी अपनी बहन शहनाज मंसूर गुड आफ्टरनून और जुमा की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और आपके साथ का बेहद बेहद शुक्रिया मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप इतने प्यार और मोहब्बत के साथ हमारा साथ निभाते हैं हमें फ़ोन करते हैं हमें मैसेजेस करते हैं बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ना और आपसे बातें करना आपसे मुलाकातें करना अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपा जी आप कॉल कर रही थी आपकी आपसे बात नहीं हो पाई कोई बात नहीं बहुत जल्द आपसे अगर आपके अभी घर पे ही हैं और बिजी नहीं हैं तो ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात करेंगे तो बढ़ते हैं जी हाँ जी आपके डेडिकेशन का सिलसिला भी हमने जारी रखना है उससे पहले ये थोड़ा सा म्यूज़िक आपको सुनवाते हैं

लो जी आगे वापस आ। बस वो थोड़ी सी लिस्ट हमें ढूंढनी थी, नामों की लिस्ट आगे पीछे हो जाती है, होता है ना, ऐसा होता है जब इंसान बिजी हो। तो देखते हैं कि ये अगला गीत जुबैदा खानम की आवाज़ में है, थोड़ा उदास गीत है, लेकिन हमारी प्यारी सी बहन हाजरा जी आपको उदास गीत अच्छे लगते हैं, तो ये गीत आपके नाम करते हैं। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, आपके नाम। सायरा जी आपके नाम, और यही गीत हम नाम करना चाहेंगे अपने प्यारे से भाई नेम बगदादी लाहौर में, आपके नाम करना चाहेंगे, और इसी गीत को मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम भी करना चाहेंगे, और आपके साथ साथ यही गीत हिना शौकत आपके नाम भी।

0: टाइम चेक।
1: जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 18 मिनट्स पास्ट वन, और आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का, जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें अपना प्यार से आपने नवाजा, इतने प्यार और मोहब्बत से आप आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी बहनों, जी हाँ, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाली हमारी प्यारी सी बहनों। दीपा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह आपके दुआओं का, आपके प्यार का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप जब भी आते हैं, इतने प्यार और मोहब्बत के साथ आती हैं और सभी के लिए दुआएँ दे कर जाती हैं और सभी को अपनी दुआओं में हमेशा याद करती हैं। सभी के लिए इज्जत और एहतराम है आपके दिलों में, और आप हमारे दिलों में, आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, बहुत एहतराम है। आप जितनी अच्छी हैं, अल्लाह करे आप ऐसे ही रहें हमेशा, और आपके, आपका साया आपके बच्चों पर, आपके नवासे नवासियों पर, पोते पोतियों पर हमेशा रहे, और आप यूं ही अपने बच्चों की खुशियां जो है वो बांटती रहें दूसरों के साथ भी और अपनों के साथ भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई, हमारा दिल बाग बाग हो गया, और अब हम खुशी जो है वो घर जाएंगे कि अपनी प्यारी प्यारी बहनों से, जो कि हमेशा हमें अपने प्यार और दुआओं से नवाजती हैं, उन सब से बातें हुई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह अपनी बहनों को ठीक ठाक पाकर और उनकी, उनके हालात जानकर कि वो ठीक हैं, खुश हैं, रेडियो को सुन रही हैं, हमारे गीतों को एंजॉय कर रही हैं, तो इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए? आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये प्यारा सा गीत मिसिस कौर आपके नाम करना चाहेंगे, सुरेंद्र कौर की आवाज़ में आपने फरमाइश की थी, तो ये गीत आपके नाम है, और आपके साथ साथ यही गीत हमारे तमाम सामेईन के नाम, जो भी पंजाबी गीतों को पसंद करते हैं।

0: नंबर डांडा नी
1: मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ांदा मिसेस कौर आपके लिए था मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा अब बढ़ते हैं कौर खूबसूरत से दो गाने की जानिब जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है और हमेशा मैं इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करती हूं हमेशा हर प्रोग्राम में नहीं लेकिन हर तीसरे चौथे प्रोग्राम में ये जरूर होता है क्योंकि मुझे ये गीत बेहद पसंद है ये गीत मैं नाम करना चाहूंगी जी हां जी अपनी प्यारी सी बहन अजीत कौर आपके नाम करना चाहूंगी मिसेस कौर आपके नाम करना चाहूंगी हाजरा जी आपके नाम करना चाहूंगी सायरा जी आपके नाम करना चाहूंगी देवा जी आपके नाम करना चाहूंगी आपकी जानिब से आपकी प्यारी प्यारी बहनें हैं हमारी भी बहनें हैं सादिया जी हैं उनके नाम करना चाहेंगे शाजिया जी के नाम करना चाहेंगे हाजरा जी के नाम करना चाहेंगे परवीन बहना के नाम करना चाहेंगे आपके भांजे हैं नदीम मंसूर उनके नाम करते हैं और रुखसार भाई के नाम भी आपकी जानिब से सभी के लिए ढेरों दुआएं आपने भेजी हैं जुमा की मुबारकबाद पेश की है यह खूबसूरत गीत मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को अच्छा लगेगा और यही गीत मैं नाम करना चाहूंगी मिस्टर मिसेस हुसैन आपके लिए भी है और आपके साथ साथ स्वीना जी आपके लिए आशिक के लिए नायला नौरिन के लिए नसरीन के लिए फरजाना के लिए शकीला के लिए रुखसाना के लिए सभीया के लिए नायला के लिए और शीला के लिए तो आइए सुनते हैं बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम

तेरे होते हो मुझे क्यों तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। बहुत ही खूबसूरत गाना था आपने सुना। और अब ऐसा करते हैं कि गीत लगाने से पहले आप ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक है, आइए सुनते हैं ब्रेक।

उसे कहना कि बेवफाई का कफारा नहीं होगा, उसे कहना बेवफाई का कफारा नहीं होगा, लौट भी आओ तो दिल अब तुम्हारा नहीं होगा। कितनी रातें जागे, कितने दिन बेचैन रहे, हमसे ये हिसाब अब दोबारा नहीं होगा। मोहब्बतें जो थी सब निसार कर दी, मोहब्बतें जो थी वो सब निसार कर दी, टूटा हुआ दिल अब किसी का सहारा नहीं।

दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। लता जी की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत आप प्यारे प्यारे सामीन के गोशे गुजार किया। आपको अच्छा लगा? अच्छी बात है, आप ही के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ का, आपके प्यार का, आपके दोबारा मैसेज करने का, बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी, आप ही के लिए था। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से पंजाबी के गीत की जानिब। मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में है, और जैसा कि हमने वादा किया था अपने प्यारे से छोटे भाई, जी हाँ जी, वाजिद भाई को, कि हम आपको पंजाबी का गीत ज़रूर सुनवाएंगे। तो अपना वादा पूरा किए देते हैं, आपके नाम करते हैं वाजिद भाई ये गीत पंजाबी का, आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम, चौधरी मुजफ्फर के नाम, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में उनके नाम, चौधरी फरियाद के नाम, आमिर शहजाद के नाम और महबूब इलाही के नाम, परवेज खान के नाम और जितने भी आपके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम, और हमारी जानिब से आप सभी के लिए है ये प्यारा सा सदाबहार गीत सदाबहार आवाज़ में।

मैं वंजली वाल लड़िया तू है गल पुलीना। बहुत ही खूबसूरत गीत, सदाबहार गीत और हमेशा पसंद करने किए जाने वाला गीत आप तमाम के लिए हमने पेश किया। हमारी बात हुई हमारे बहुत ही अच्छे से भाई, जी हाँ जी, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से। बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह अपने भाई से बात करके। आपने सभी सामीन को, सनराइज़ की टीम को, अपने तमाम दोस्तों को सलाम दुआ भेजे हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ढेरों दुआएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी हैं। गीतों को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी गीत आपको अच्छे लगे वो आप ही के लिए थे और आने वाले गीत भी आप ही के लिए होंगे। हमारी चॉइस को आपने सराहा, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। आप ही के लिए हम आते हैं और अगर जब हमारे सामीन खुश होते हैं तो हम भी खुश खुश घर जाते हैं। ये गीत आपके लिए है, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के लिए। साजिद महमूद भाई आपके लिए है, मिसेस कौर आपके लिए है, हाजरा जी आपके लिए है, सायरा जी आपके लिए है। दीपा जी आपके लिए, सादिया जी आपके लिए है, शाजिया जी आपके लिए है, हाजरा बहना आपके लिए है, प्रवीण बहना आपके लिए है, नदी मंसूर भाई आपके लिए भी ये गीत। नईम बगदादी भाई लाहौर में है आपके लिए भी। तो गंगा की मौज में जमुना का धारा, रहेगा मिलन हमारा तुम्हारा।

बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। बहुत ही खूबसूरत गीत, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। आपने सुना, आपने पसंद किया, बहुत अच्छी बात है, आप ही के लिए था। और अब ऐसा है कि अगला गीत नहीं लगाएंगे ये गीत थोड़ा सा और सुन लेते हैं, फिर आपको टाइम चेक करेंगे, आपके साथ साथ आपको टाइम बताएंगे और ब्रेक लेंगे और फिर मिलेंगे आपसे।

मिस्टर एंड मिसेस हुसैन, बेहद शुक्रिया आपका, दोबारा आपने टैक्स किया, अच्छा लगा कि आपने प्रोग्राम को पसंद किया, गीतों को आप एंजॉय करते रहे पूरे 3 घंटे। हर एक गीत की आपने तारीफ की और हर एक गीत को आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन इंशाल्लाह।

0: चले आओ जी, चले आओ जी, मौजों का लेके सहारा जी। जहाँ जाना हो ना, जहाँ पहुँचना हो, जहाँ अगर मंजिल नज़र आ रही हो, तो इंसान जो है कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वहाँ पहुँच ही जाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत, दिल को छू लेने वाला गीत, दिल की तारों को छेड़ने वाला गीत, बार बार सुनने जाने वाला गीत। आपने सुना, आपको अच्छा लगा? अच्छी बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये गीत। तो ऐसा है कि टाइम बताते हैं आपको अब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 1:46।

बता दो क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजर आना तुम याद रखोगे या भूल जाओगे। जी हाँ जी, बस लौट के जरूर आना, अगर खुदा जिंदगी दे और सेहत दे तो मिलते रहना अपने प्यारों से, उनसे कभी जुदा मत होना, क्योंकि जुदाई बहुत, वो कहते हैं ना, माड़ी होंदी है, पंजाबी च कहते हैं, बड़ी माड़ी होंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, आप तमाम भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमें दुआओं से नवाजा, अपने प्यार से नवाजा, और सबसे बढ़कर मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना कीमती वक्त हमें दिया, फ़ोन किया, हमसे बातें की, हमें टेक्स्ट किए, मैसेजेस भेजे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप इतना कीमती वक्त, जो कि आजकल बहुत कम होता है आप हमारे पास, और ना काम करते हुए भी हम लोग इतने बिजी होते हैं कि किसी का हाल पूछने का हमें वक्त नहीं होता, लेकिन आप हमारे इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने वो कहते हैं ना कि अजीज़ हैं हम सब के, कि आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारा हाल पूछते हैं, हमें दुआएं देते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारी सी बहन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, शायद वो नहीं चाहती कि मैं उनका नाम एयर पर लूँ। उन्होंने अभी अभी फ़ोन किया और पूछा कि हम पिछले हफ्ते कहाँ थे। आपको बता दिया कि हम, तबीयत भी ठीक नहीं थी, और क्योंकि 10th अशूरा था लास्ट फ्राइडे को, तो हम सब के लिए वो जो है एक बहुत ही सैड डे था हम सब के लिए, तो जी नहीं चाहा था, इसलिए छुट्टी कर ली थी आपने पूछा, आपने हमें मिस किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, हमारा हाल पूछने का, दुआएं देने का। हमारी दुआएं हमेशा आप तमाम के साथ रहती हैं। तो प्रोग्राम का वक्त अब यहीं तक था, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा है। 3 घंटे बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ ये सफ़र हमने तय किया, क्योंकि आप हमारे हम सफ़र थे। आप सबका बेहद शुक्रिया हमारे हम सफ़र बनने का, और इस प्रोग्राम को खूबसूरत और हसीन बनाने का, अपने खूबसूरत नामों के साथ, अपने प्यारे प्यारे पैगाम के साथ। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके प्यारों का भी, जिन्हें आप याद करते हैं और जिनके लिए आप पैगाम भेजते हैं सनराइज़ रेडियो पर।

बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने चाहा, जिंदगी ने वफा की, सेहत ने इजाजत दी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे इसी मकाम पे, इसी जगह अगले हफ्ते। जी हाँ जी, रिश्ते सलामत रहें, यादें बाकी रहें, तो मुलाकातें होती रहेंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, शाद रहिएगा। और चलते हैं हम, आप सबका और हमारा अल्लाह ने के बान। बाय फॉर नाउ, गुड आफ्टरनून, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड एंड एंजॉय द वेदर।

सतसेकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

आपके मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाजों पर मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था, उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में, और आप के जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

जी हाँ जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफ़े हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाएँ। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सके आपके साथ साथ।

0: लिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी आप सुन रहे हैं गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आया ने खुश आमदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आपकी मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे, और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी जिंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरां ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم محترم و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد اور یہ ہمارا سیشن ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے عالم آن ایئر سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اکراس ویسٹ یارکشائر اینڈ پوری دنیا کے اندر آپ اس کو سن سکتے ہیں sunriseradio.fm اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں www.sunrise.radio اور سن رائز کی اپنی بھی ایپ ہے اس ایپ کے ذریعے اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے پوری دنیا میں آپ سن سکتے ہیں آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد اینڈ دس از آور ویکلی سیشن عالم آن ایئر ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 o'clock اینڈ 9 o'clock یو کے ٹائم Sunrise Radio 103.2 FM 100.6 FM across West Yorkshire and you're most welcome to listen to it throughout the world on www.sunriseradio.fm or www.sunrise.radio and Sunrise Radio have their own app as well isme aap bhi hissa le sakte hain hamari studio ka number 01274 306 66 306 66 01274 306 66 and if you're calling from abroad don't forget to add on the extension of 0044 which is the UK extension aaj ka mauzu zehen ke andar ek aham mauzu جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی اور وہ موضوع یہ ہے the topic I wanted to speak about today is something that touches every single one of us whether we are old whether we are young healthy or weak rich or poor every one of us is traveling in a specific direction and that direction is old age of course if Allah grants us to reach up to there and the topic I want to be speaking about is looking after the elderly especially parents but also the elderly in our society ہماری معاشرے کے اندر جو بزرگ لوگ ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا خاصتا جو والدین ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں جو بڑے بوڑھے ہیں جو کمزور طبقہ ہے ان کا لک آفٹر کرنا یہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے بلکہ ایک عزت کا مقام ہے بلکہ جنت کا ایک راستہ ہے This looking after the elderly especially the parents or the elderly in the society it's our Islamic duty In fact, it's an honor. And at the same time, it's a path towards Jannah.
जन्नत का एक रास्ता है। और ये बात याद रहे कि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। There are great tragedies that have overcome our societies. And I'm not speaking about poverty. Poverty is a huge catastrophe that can befall a society. किसी मुआशरे के अंदर गुरबत अगर बहुत आम हो जाए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी तकलीफ है। लेकिन इससे बड़ी एक और मुसीबत और एक तकलीफ है। इसी तरीके से अगर किसी मुआशरे के अंदर बीमारी बहुत फैल जाए तो वो भी एक मुसीबत है, लेकिन जिस तकलीफ और मुसीबत की मैं बात कर रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा है। और वो मुसीबत और वो तकलीफ अकेलापन, the tragedy and the catastrophe that I'm speaking about today is the loneliness. And the loneliness especially in the later years of a person's life, in the years of life when you actually need companionship, you need the society to be with you, you need people to be there, people to brighten up your life. और बुढ़ापे के अंदर आपने देखा होगा कि जब बूढ़े हो जाते हैं, चाहे बूढ़ा मर्द हो चाहे औरत हो, तो बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी के अंदर इतना अकेलापन आ जाता है कि कई कई हफ्ते उनके ऊपर गुजर जाते हैं और उनके साथ कोई बैठने वाला नहीं होता। समटाइम्स मैनी वीक्स पास on some of the elderly and nobody is there to come and visit with them, sit with them, speak with them, give them company, something that they actually crave for at this age. Is umar ke andar unko jiski sakht dar sakht zarurat hoti hai ki kam se kam hamare paas koi aakar baithe और बैठकर हमारे साथ वक्त गुजारे और हमारे साथ कोई बातचीत करे या हमारी बातें सुने, और अगर बातचीत न करे या हमारी बातें न सुने तो कम से कम इतना तो करे कि वो हमारा साथ तो दे, थोड़ी देर हमारे साथ तो बैठ जाए। इवन इफ दैट पर्सन कैन नॉट स्पीक टू अस लॉन्ग and cannot listen to us long, then at the minimum, if as an elderly person sitting there in that high chair or in their bed laying down or in that confined room of theirs, in that lonely atmosphere, they can have somebody sitting with them and spending some time with them, so they know that they are in the company of somebody. किसी के साथ वो अपना दिन गुजार रहे हैं। I remember an elderly friend, and only some days ago I found out he's passed away. And the extraordinary thing was, on the group chat they wrote that he's passed away in October. And now we are in June, or in fact, July has started. July 2026. And some days ago, in the group chat, in one of the groups on social media, it was sent that such and such person, which most of you will know, an elderly person, has passed away in October. Now think about it. October, November, December, January, February, March, April, May, and June.
now people are beginning, his friends and family and surrounding people are beginning to find out that this person has passed away 9 months ago. No mahine pehle ek shakhs jo kisi waqt hamare saath kaam karte the, main school ke andar hota hu aur us school ke andar wo kabhi kabhi aate the, he would come. And because he was elderly and wanted to spend some time with the youngsters, and he was very good in carpentry, लकड़ी का काम बहुत अच्छा करते थे, बाकी भी और, तो वो चाहते थे कि मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यंगस्टरों के साथ गुजारूं और उनको कुछ न कुछ सिखा दूं, और हमारे स्कूल के अंदर आकर उनको हम एक छोटी सी ग्रुप दे देते, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, टीचर की निगरानी के साथ, और वो उनको सिखाते कि लकड़ी लेकर बाहर से जो फटी पुरानी लकड़ियाँ होती, स्क्रैप वुड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द स्किप्स और थिंग्स दैट पीपल हैव थ्रोन अवे, और समटाइम्स व्हेन यू आर रिफर्बिशिंग अ हाउस और अ बिल्डिंग एंड यू send away certain pieces of wood and you don't need it any longer, jo lakdiyan is tarah phenk di jati skips ke andar cabin ki zarurat nahi hai, you're renovating a house and you've broken down the old wood, throwing it away, to ye bachchon ko sikhate ke isko phenkne ke bajaye isko dobara hum recycle kar sakte hain aur mukhtalif cheeze bana sakte hain. And he would teach those youngsters, and on purpose, I'm not saying his name now because I don't know how many people know about him, don't know about him, etc. And I would see so many times, I remember he took little logs that have been thrown away, tree, parts of a tree, and he made two little stools out of them for the youngsters that would like to sit down during break, during lunch times. Or he showed them how to carve them out. He would make benches out of broken wood. He would join them together, carve them out, and make small little plant pots. Vagera, vagera. Such a lovely person. Achanak usko stroke hua. He was taken into hospital, and then he was transferred to a elderly person's home, जो बूढ़ों के लिए उन्होंने homes रखे हुए हैं, तो हम कभी कभी वक्तन फवक्तन उनके पास चले जाते हैं मुलाकात के लिए, उनकी खैर खबरी. हमारे यहाँ स्कूल के अंदर कुछ फंक्शन होता तो स्पेशल हम गाड़ी भेजते, उनको ले आते. काफ़ी अरसा हुआ उनसे भी किसी ने रबता नहीं किया, किसी ने, उनके रिश्तेदार शायद उनको भी पता होगा, लेकिन कहने का मकसद कि वो बेचारे अकेले उधर होते. तो वो एक मर्तबा, असल बात पर आ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कम टू द पॉइंट, वंस ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हमने, वी टुक हिज नेम एंड वी सेड, हाउ हैज योर वीक बीन और हाउ हैज योर मंथ बीन, आपका ये हफ्ता किस तरह गुजरा या आपका ये पूरा महीना किस तरह गुजरा. इट वॉज वन वे ऑफ ट्राइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, उनसे बात करने का एक अंदाज था कि चलो बात करना शुरू कर दें. तो उसने हमारी तरफ देखा, हम दो तीन आदमी थे वहां उसको विजिट करने के लिए गए होम में, तो उसने कहा कि द बेस्ट पार्ट ऑफ माय वीक इज व्हेन आई हैव समबडी सिटिंग विद मी, इवन इफ दे आर सिटिंग क्वाइटली. उसने कहा सबसे मेरा बेहतरीन वक्त वो गुजरता है कि जब मेरे पास कोई आदमी आकर बैठ जाते हैं, अगरचे वो बात ना करें लेकिन खामोशी के साथ भी बैठ जाएं, बातचीत करें तो बहुत अच्छा. इफ दैट पर्सन इज स्पीकिंग देन इज इवन बेटर, बट इफ द पर्सन कांट इवन स्पीक, जस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग इज समथिंग वी क्रेव. क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान किसी होम के अंदर या किसी घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर अकेला रेस्ट करते करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता जब गुजर जाता है,
दो हफ्ते तीन हफ्ते एक महीना जब गुजर जाता है तो अब उसके बाद उसको उन्स की ख्वाहिश होती है. दिस पर्सन क्रेव्स कंपेनियनशिप एज अ ह्यूमन बीइंग. दोज आर आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. ये हमारी जरूरत है. और जैसे उस शख्स ने हमें बतलाया कि सबसे बेहतरीन वक्त हमारा वो गुजरता है कि जब हमारे पास कोई आकर बैठ जाए और वक्त गुजारे, हमारी बातें सुने, अपनी बातें सुनाए, अपनी जिंदगी की जो अहम अहम मोड़े थी वो हम उनके साथ डिस्कस करके उससे हमें लुत्फ अंदोज होते हैं. सो वी कैन स्पीक टू somebody and speak about the important milestones of our life, the important events that took place in our life, and that way we can cheer ourselves up once again, enjoy those moments once again, the times of the wedding, the happinesses, the times when we had children and how they were growing up, and the fantastic, fabulous, joyous moments. By speaking to you guys, aap logon ke saath baat karte hue, when we speak about them, then that joy, that happiness, the cheerful mood, we begin to feel it once again. वो खुशी का वक्त जो हमारे ऊपर गुजरा जब हम आपके साथ बातचीत करते हैं उसके बारे में, हमारे बचपना का, अब तो बूढ़े हो गए लेकिन बचपने की बातें, या जिस वक्त अल्लाह ने हमें औलाद दी थी, वो बड़े हो रहे थे, इर्द गिर्द जो काम करते थे, अचानक जो अच्छे मौके मिल जाते, उस वक़्त की जो खुशियाँ और उस वक़्त के जो माहौल की खूबसूरती थी और उस वक़्त के जो बेहतरीन एहसास थे, वो अब हमारे ऊपर दोबारा एक किस्म के आ जाते हैं तो हमारा दिन हफ्ता खुशी के साथ गुजर जाता है. ऐसे बूढ़ों के पास जाकर और उनकी ये बातें सुन सुन सुनकर जिंदगी ने मुझे बड़ा ही सिखाया है. और अजीब बात यह बतलाई है कि अपनी जिंदगी के अंदर इंसान जितना भी बिजी हो और जितना भी इंसान रेस्ट का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन जब वो बुढ़ापे को वो शख्स पहुंचता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, और उस वक्त वो अकेले होते हैं, तो वो अकेलापन उनके लिए एक मुस्तकिल उनके लिए एक सजा होती है. उनके लिए वो आराम नहीं होता. दैट लोनलीनेस इन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट. इट्स नॉट अ रेस्ट और लग्जरियस टाइम, बिकॉज द एल्डरली दे क्रेव कंपनी. और सोसाइटी के अंदर ये क्यों बड़ी मुसीबत आ गई है, मैंने इसके ऊपर क्यों बातचीत की है, इसलिए कि what I've noticed and a lot of people I've spoken to over the past years, इस कुरान करीम ने और जो अहदीस मुबारका में हमने देखा कि हमें बड़ी तरगीब दी है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, एहसान का मामला करो. वो इसलिए कि इंसान के ऊपर एक वक़्त आता है कि अपनी चुस्ती के अंदर और अपनी मस्ती के अंदर होता है, अपने दुनियावी हालात की वजह से, मशगूलियत की वजह से, जो बड़े बूढ़े वालिदैन होते हैं उनकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं होती. एज ए ह्यूमन बीइंग इन आवर एडल्टहुड, in our middle ages, we become so engrossed in the dunya, we become so busy in our commitments. And I say commitments because people are genuinely very, very busy at times. It's not that they are making excuses, it's just that they are genuinely very busy. And that's why Quran has emphasized greatly about the looking after parents, but not just looking after the elderly, but making ihsan, going that one mile more than goodness towards them. And that's why Quran-e-Kareem
paints this picture of, if they were to say anything to you, then you must not reply with oof. Because that genuinely happens when they have reached to a certain elderly age, when they are totally frustrated, and upon even the good deeds that you are doing, they may find criticism, they may feel they need to respond, because they are so frustrated of loneliness, and they are so frustrated of losing authority, because there was a time when they had authority upon the youngsters, and now they feel unlistened to. अब उनको ये महसूस होता है कि मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं. So throughout their life, as they were bringing up their family for the 20, 30, 40 years, उनको ये महसूस होता कि जो बात मैं कहता हूँ या कहती हूँ वही चलती है. जिस अंदाज में मैं समझता हूँ ये यंगस्टर नहीं समझते, इसलिए इसी तरीके से करना है. और जब बुढ़ापे के अंदर पहुँच कर उनको ये महसूस होता है कि अब ये अपनी ही मर्जी करते हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं. They are doing whatever they decide and they are not even consulting us. They feel we know better, and at times they do. We know better, but we are not listened to. हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है. And then they feel that because we are the elderly, we should have been consulted about things, whether they are family matters, whether they are individual matters, whether they are matters that concern them or don't concern them. But they have this respect of feeling that we will feel respect if we are involved in your decisions of the family. Aapki family ke andar jo mashware hote hain uske andar hame bhi shamil karo. Budhapon ka, budhon ka aur budhiyon ka is kisam ki zehniyat hoti hai ki hame bhi in mashwaron ke andar shamil karo. पूरी ज़िंदगी 20 साल 30 साल हम आपको जब बड़े करते रहे तो हमें भी तजर्बा है. वी हैव द एक्सपीरियंस, हमें भी इल्म है इन चीज़ों का. वी हैव द नॉलेज एंड द बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन अचानक आपने हमें पिक्चर से बिल्कुल ही निकाल दिया. बाल की तरह, जैसे बाल आटे से आदमी निकाल कर एक साइड पर रख देता है और आटा बिल्कुल खालिस, तो इसी तरीके से आपने हमें अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल इसी तरह निकाल दिया है. यू हैव प्लक्ड अस आउट ऑफ योर लाइव्स, आउट ऑफ द फैमिली, आउट ऑफ द सोसाइटी, एंड यू हैव पुट अस टू द साइड, एंड दिस एक्चुअली हर्ट्स देम डीप डाउन इनसाइड. अंदर उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है. बट बिकॉज they don't want to upset anybody, they don't normally say this. इसलिए आम तौर पर मैं ये यंगस्टरों को कहा करता हूँ. So this is the problem that we have in the society. But Quran Kareem and the Ahadith Mubarakah have addressed this head on and told us exactly what to do. Quran Kareem ने और Ahadith Mubarakah ने बिल्कुल आमने सामने हमें इसका हल बतला दिया है कि उन बुज़ुर्गों के साथ किस अंदाज में, किस बेहतरीन अंदाज में उनके साथ पेश आना है, उनके साथ वक़्त गुजारना है, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनना है, उनके साथ बेहतरीन सलूक करना है, उनकी इज्जत करना है, उनका एहतराम करना है. We are to respect them, honor them, let them know that they are valuable in our society, appreciate their presence amongst us. पहले ज़माने में तो हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि बाज़ औक़ात बूढ़े वो इतने बूढ़े हो जाते कि अपने बिस्तरे से उठ नहीं सकते थे, लेकिन जहाँ भी कोई शादी होता, ब्याह होता, कोई मशवरा होता, कोई इलाके के अंदर अहम काम होता, तो उन बूढ़ों को मंजी के साथ, यानी कट के साथ, ऑन द स्पेशल बेड दैट दे हैव ट्रेडिशनली मेड आउट ऑफ स्ट्रॉ एक्सेट्रा, सो विद दैट
they would carry the elders and they would get them to sit there, even if the elders were not speaking and even if the elders did not have any much contribution, but just being there as a presence, the youngsters would feel this is our barakah, and the elders would feel appreciated and valued, and this would enlighten their lives. Unki zindagi isse badi khush hoti, and they will feel involved even if they were physically not involved in these occasions. Agarche wo zati taur par kisi khane ki taqseem mein ya kisi cheez ke hissa ke andar wo na lete ya help na karte, lekin sirf udhar baithe rehna khaas maqamat ke upar wo apni izzat samajhte, they would feel respected. Wo samajhte ki hum badi keemti hain is society ke andar, and they are, or wo kimti hai, they are most valuable assets that we have, with the knowledge and the experience and the understanding of life that they have. If they are 80 years old, that means they have got 80 years of experience and understanding. They may not speak about it. Baz okat wo uske bare mein baat cheet to nahi karte. To isliye, getting back to the mauzu jo main baat kar raha tha, the topic, is we can see a whole depreciation of, or unappreciativeness of elders in our society. Hamari society ke andar hum dekhe, to Quran ne, hadith ne, aur Islam ne jo hame bade boodon ka aur elderly ka jo look after karne ka andaaz sikhaya, wo ek cheez hai. और जो आजकल सोसाइटी के अंदर हो रहा है वो एक मुस्तकिल अलग चीज है. और कुरान करीम एंड अहदीस मुबारक एंड द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टॉट अस एंड इज आस्किंग अस टू डू इज वन फेज, एंड व्हाट वी सी इन रियलिटी दैट इज हैपनिंग नाउडेज इज अ डिफरेंट फेज इन द कॉन्ट्रास्ट ऑल टुगेदर. मैंने कई देखे हैं अस्पतालों के अंदर, मैं तो जाकर विजिट करते रहता हूं जब भी फारिग वक्त मिले, और मैंने देखा कि एक बूढ़े के पास जब मैं गया, वो गिर गए थे, गिरने की वजह से अस्पताल के अंदर उनकी हड्डी वगैरह, टांग की जो हड्डियां हैं वो टूट गई थी, तो उन्होंने बांध कर टांग वहां लंबी उन्होंने रख दी. An elderly I knew, and I try to go to hospital whenever I get a free chance to visit people, different hospitals, because it brings the reality of life, and secondly their du'as, and because the hadith has really recommended it. So this person, elderly, had fallen, broken some bone in his leg. He had a plaster and had his leg hung up. To unke paas hum gaye, aur वहाँ करीब ही एक दूसरे भी थे, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हर आदमी एक इंसान है. As a human being we treat everybody the same. So I spent a few minutes with this elderly person that I had gone to visit, जिसके पास मैं गया था, and then I said I want to go and spend some time, a few minutes with this other person, a patient. It might lighten the person's day. And he said, oh, of course, Maulana, go over there. That's perfectly fine. Unke paas aap ja sakte hain, Maulana, aap jao. Uske paas main jab gaya to, one of the things is ke you show them positiveness of life. Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam ne hame badi hi ajeeb andaaz ke andar jo adab sikhaye hain kisi bimar ke paas jaane ke, the etiquettes of when you visit an ill person and a patient, and how you to respond and show positiveness and show them life and show that they will get better, etc. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Tahur, inshallah." He said, "You will be fine, inshallah, a little while, and you will get better, inshallah. You watch out." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pump in positivity into people. As soon as I went to him and I sat and spoke, and after 5 minutes, or just over 5 minutes, I wanted to leave. मैं 5 मिनट के बाद मेरा दिल था कि अब इससे उठकर एक दूसरा आदमी है वहाँ, चलो उसके पास भी चले जाते हैं, because it was a ward and there was about 6 people.
6-7 आदमी थे, 6 आदमी थे उसमें, मेरे दिल था 5-5 मिनट इन सब के पास चले जाऊं. आई ओनली नो दिस वन पर्सनली, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स एंड इट्स नाइस टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. उसने जो बातें शुरू की कि व्हेन आई वाज यंग आई वाज डूइंग सच एंड सच एंड आई डिड दिस एंड आई डिड दिस एंड आई वाज इन द आर्मी एंड देन आई डिड दिस एंड, तो मैंने देखा जब टाइम हो गया तो मैंने कहा कि आई नीड टू गो एंड आई सेड हिज नेम रॉबर्ट. I said, Robert, I need to go and I want to visit another person. तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. He had tears, his eyes filled with tears, and I noticed, and I could see there was a lump in his throat. He wanted to speak, but he was feeling upset. तो as a mark of respect, I grabbed hold of his hand and I gave it a little squeeze. उसका हाथ पकड़ कर मैंने आहिस्ते से उसको थोड़ा सा जोर दिया और मैंने कहा यू विल बी ओके डोंट वरी आई होप यू नॉट अपसेट विद मी गोइंग. तो ही सेड नो आई एम सो हैप्पी दैट यू केम दैट आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू. मैं इतना खुश हूँ आपके आने से कि मुझे पता नहीं कि आपका शुक्रिया किस तरह करूँ, हाउ टू थैंक यू. तो मैंने उस आई शुक हिज हैंड अगेन एंड हिज ऑल आर्म वाज शेकिंग. And I said, oh, you don't need to thank me. I'm just doing a duty that my faith instructs me to do. मैंने कहा कि मेरे इस्लाम ने, मैंने सोचा कि साथ में उसको दावत भी दे दूँ. मेरे दीन ने मेरे ऊपर एक फरीजा रखा है, मैं अपना फरीजा पूरा कर रहा हूँ. ये आपके ऊपर एहसान नहीं है. I'm not doing a favor for you. This is a duty my religion has placed upon me, my faith has given me. I thought, आदमी किसी पर एहसान तो नहीं करना चाहिए, ये तो मैं अपने दीन का एक फरीजा अदा कर रहा हूँ, मेरे नबी ने इसकी तरगीब दी है, इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है. वो बहुत खुश हुआ. तो मैंने कहा कि आई एम श्योर यू विल गेट अदर विजिटर्स एंड दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक. मैंने कहा फिक्र ना करो, आपके कोई ना कोई विजिटर ज़रूर आते रहेंगे और ये पॉइंट मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ. उसने वो बेड पर लेटा हुआ था, he slowly shook his head from right to left and left to right and right to left. Usne kaha, I've been here for many, many months and you're the first person other than the medical staff, doctors, nurses, the people who work there, you're the first person who's come and given me some time. You're the first person who's come and given me time. You're the first person. He repeated it a couple of times. Do teen martaba usne ye kaha ki tu sabse pehla aadmi hai. Ye medical staff ke alawa, matlab doctors, nurses, jo unke consultants jo unke hote hain hospital ke, matlab unke alawa mere kai kai mahine ho gaye hain. Aap pehle aadmi hain jinhone mere paas baith kar is tarah baat cheet ki. Khair, I sat there a few more minutes. I couldn't just get up and just walk away. मैं वहाँ से उठकर जा नहीं सकता. दो तीन मिनट और बैठा. वो खामोश रहा उसके बाद. उसके बाद उसने कुछ और बातें नहीं की. He didn't speak about his past or anything. लेकिन मैंने जैसे हाथ उसका पकड़ रखा, उसने मेरे हाथ को भी जोर दिया. I had my hand in his hand. He was elderly, past his 80s, close to his 90s. अस्सी से गुजर गया था, 90 साल के करीब था बूढ़ा. मैंने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर रखा हुआ था और उस वो भी नहीं छोड़ रहा था. मेरे दिल के अंदर अजीब बात हुई कि आज ये शख्स इस तरह है, इतना दुखिया है, अपने दिल की बात किसी को कह नहीं सकता. और जो मेडिकल स्टाफ होते हैं बेचारे, दे आर डूइंग सच अ लवली जॉब, लेकिन दे हैवंट गॉट टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक टू एनीबॉडी लाइक दिस. उनका तो काम ही होता है किसी को इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देकर वहाँ से चले गए, किसी का हार्ट रेट चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया. कंसल्टेंट्स इफ दे कम अलॉन्ग दिल आस्क यू योर सिम्टम्स, इन 2 मिनट्स दे आर गॉन. They can't talk about anything else because they've got so many patients to cover. उनके पास इतना वक्त नहीं होता. जो क्लीनिंग स्टाफ होते हैं बेचारे, वो आकर जल्दी जल्दी आपको एक साइड में करके, आपकी बेड ठीक ठाक करके,
बेड की जो शीट्स हैं वो तब्दील करके पिलो तब्दील करके वहां से चले गए दूसरे के पास. दे हैव गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड सो मच जॉब्स टू डू. तो ये बातें उनके पास बेचारों के पास टाइम नहीं होता. दे आर देमसेल्व्स वंडरफुल पीपल. The staff, whether they are the nurses, whether they are cleaners, whether they are the doctors, the senior doctors, the consultants, the ancillary staff, jitne bhi hai, all those in the healthcare are fantastic, lovely people, very, very patient. But they haven't got the time to sit down with a patient because there's so many patients, hundreds of patients. And how are they going to sit with each one? This is the responsibility of the society. Ye zimmedari hai society ki. First of all, the immediate family, then the extended family, and then the wider society. Kitne aise hain ki unke upar kai mahine balki saal guzar jate hain. वो होम्स के अंदर अकेले पड़े हुए हैं. दे आर लेइंग डाउन ऑल बाय देमसेल्व्स इन द होम्स एंड इट्स जस्ट लाइक दोज ट्रैफिक लाइट्स. द ट्रैफिक लाइट विल गो रेड, अ टाइम विल कम व्हेन इट विल बिकम एम्बर, देन ग्रीन, देन एम्बर, देन रेड. द होल साइकिल जस्ट गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड. पूरा साइकिल इस तरह. तो उन बेचारों के लिए भी वहाँ बिस्तरे के अंदर होते हैं, सुबह होती है उनको कुछ नाश्ता दिया जाता है, बस लेटे रहते हैं, शाम होती है खाना दिया जाता है, दरमियान में कोई स्नैक चाय वगैरह, वक़्त आता है लाइट बंद हो गई, गो टू स्लीप, सुबह उठते हैं, फिर इस तरह दिन गुजर जाता है, फिर इस तरह रात. आखिर वो भी ह्यूमन बीइंग्स, वो भी इंसान हैं. दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव देयर नीड्स, दे हैव देयर वांट्स. They are people who contributed to our society for a huge amount of years. Kitne saal unhone hamari is society ki taraf contribute kiya. To aaya aise boodhon ko hum aise hi chhod denge? Are we going to really be that hard-hearted that we are going to leave the elderly just by themselves like that? हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुतहरा की तरफ देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वहाँ एक बूढ़ी हुआ करती थी. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद उनके पास फौरन जाते और वो भी इंतज़ार करती. बहुत बड़ी बूढ़ी थी, एन एल्डरली, वेरी एल्डरली पर्सन. एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड परफॉर्म जुमा. रिमेंबर इन जुमा ही इज गुड ऑल द सहाबा इकराम, ऑल हिज कंपेनियंस रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, ऑल ऑफ देम आर द पीपल ऑफ जन्ना, ऑल ऑफ द सहाबा. एंड ही वुड गिव देम द सर्मन, द जुमा खुतबा. और जुमा खुतबा के अंदर बयान फरमाते, जुमा की नमाज फिर पढ़ते. एंड देन ही वुड कम आउट. Think how busy he was. Think how much he had on his mind. And he's got all the hundreds of Sahaba, all his companions around him. And of course, there will be many people who will have their personal needs, personal mashwara, want to speak to the Prophet. Like, and he would go to this elderly and he would spend his time with them for a bit and then go home. And Anas radiallahu ta'ala says, when we grew up to follow upon this sunnah, we would go and she would make us some food. A special food is mentioned in the hadith, and we would sit down and eat with her, and then we would run off home. What a beautiful society the Prophet was creating. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ek behtareen muashara bana rahe the ki jisme khud bhi jaate boodhon ke paas, thoda waqt guzarte. Ki agar ek shakhs ek din ke andar jaye juma ke din, dusre log jo hain wo Thursday ke andar jaye, दूसरे लोग सैटरडे के अंदर जाएं. तो इस तरीके से बूढ़ों की जो जिंदगी है वो बेहतरीन गुजर सकती है. हाउ मेनी टाइम्स, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन दिस लास्ट मंथ और टू मंथ्स हैव यू विजिटेड एन एल्डरली पर्सन इन योर सोसाइटी? आपके इलाके के अंदर, आपके माशरे के अंदर जो बड़े बूढ़े हैं,
कितनी मर्तबा पिछले इस महीने में या दो महीने में या छः महीने में आप उनके पास गए और थोड़ा सा वक्त उनके पास गुजारा है। अपने यहाँ स्कूल के अंदर हमने तो एक सिस्टम कई सालों से हमने शुरू किया था कि हर हफ्ते हम यंगस्टरों को ले जाते हैं, छः सात को एक ग्रुप बनाकर, और स्कूल के करीब जो बूढ़ों का होम है उनके पास चले जाते हैं। तो दो इनके पास चले गए, इस बूढ़ी के पास, दो उसके पास चले गए, तीन चार उसके पास चले गए, उनके पास बैठते हैं, उनको पूछते हैं। वो बड़ी बूढ़ी जो है या बूढ़ा जो है 80-90 ईयर्स ओल्ड, वो जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे 11 साल के 10 साल के उनके पास आते हैं, 12 साल के 12 ईयर्स ओल्ड 11 ईयर्स ओल्ड, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन, हम टीचर्स उनके पास जाते हैं, मैं अपने जो स्टाफ है उनके पास भेज देता हूँ, उनके पास बैठते हैं, उनको पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं। दे टेक सम क्रेयंस, टेक सम पेंसिल्स, और उनके सामने बैठकर उनके साथ खेलते हैं, गेम खेलते हैं वगैरह, स्पेंड अबाउट एन आवर। तो उससे एक सोसाइटी के अंदर हम सोसाइटी बना रहे हैं कि जिसके अंदर द एल्डरली दे फील वैल्यूड। ठीक है, हम हर एक का तो कैटर नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम द टू होम्स ऑफ द एल्डरली जहाँ हम जाते हैं, ऑफ कोर्स जो प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ होम की विजिटिंग के, उन वहाँ जो मैटरन है, वी कीप इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड दे फील सो हैप्पी दैट यंगस्टर्स आर कमिंग इन। तो उससे क्या होता है कि जो एल्डरली है, जो बड़े बूढ़े हैं, दे फील हैप्पी अबाउट इट एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ट्यूजडे आफ्टरनून और समटाइम्स द थर्सडे आफ्टरनून। वो मंगल के जो आफ्टरनून है या जो थर्सडे का आफ्टरनून है उसके लिए वो आगे इंतजार करते हैं कि अभी कौन सा दिन है। वो मैट्रन हमें कह रहे थे, द पर्सन द सिस्टर इन चार्ज, शी सेड देयर सो मेनी टाइम्स दिस एल्डरली पीपल दे से व्हाट डे इज इट टुडे एंड व्हेन वी टेल देम, वी सेड व्हाई, दे सेड वी आर वेटिंग फॉर द ट्यूसडे आफ्टरनून बिकॉज दोज यंगस्टर्स आर गोइंग टू बी कमिंग टू विजिटर्स। हम मंगल आफ्टरनून का इंतजार कर रहे हैं कि वो यंगस्टर आएंगे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। तो इसमें बूढ़ों का भी फायदा और यंगस्टरों का फायदा क्या कि इनके जहन के अंदर ये आता है कि हमें एक वक्त आएगा हम भी इस उम्र के होंगे, और दूसरी बात बड़ों की कदर, तीसरी बात, थर्ड थिंग इज वी आर ट्रेनिंग देम ऑफ हाउ टू हैव दिस कनेक्शन विद द एल्डर्स। सो व्हेन दे वांट टू सिट विद द एल्डर्स दे नो व्हाट टू डू, दे नो हाउ टू रिएक्ट, दे नो व्हाट प्लीजेस द एल्डर्स, हाउ टू कीप देम एंटरटेन्ड। ये ना हो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से देर इज सच अ बिग डिसकनेक्ट अमंग्स द सोसाइटी ऑफ पीपल दैट यू विल हैव यंगस्टर सिटिंग डाउन, द एल्डर सिटिंग डाउन एंड दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन अ नंबर ऑफ वेडिंग्स पीपल आर सिटिंग ऑन द टेबल and they've got their smartphones out, that person's got their smartphones out, and that one, and they are actually too busy talking to the people who are not there, and the people that are there, they're not talking to them. जो उधर लोग हैं आपके साथ टेबल में उनसे बात नहीं करते, और जो उधर मौजूद नहीं है उनके साथ बात कर रहे हैं through the media, social media. We've flipped the roles. तो इसलिए मकसद ये होता है कि इन यंगस्टरों की यहाँ एजुकेशनल और एकेडमिक स्कूलिंग हो, इनकी मॉरल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, इनकी अखलाकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, मॉरल ट्रेनिंग, दे कैरेक्टर बिल्डिंग, दे कम्युनिकेशन स्किल्स विद द एल्डरली और दोज हु आर ओल्डर देन देम, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, वैल्यूइंग द एल्डरली इन द सोसाइटी दैट्स, और वैल्यूइंग द एल्डरली सिटीजन ऑफ आवर एरिया, that is a huge skill that we need to instill inside our youngsters. Hamare youngsters ke andar ye skill and the empathy and the sympathy for these elderly, that is important. That's not just Islam, that's our humanity as a human being, ek insaan hone ke nate se
Now, I know I've been going on very long and we've not even had the breaks in the middle. Darmian made no breaks, regging him, but it was a message I really wanted to pass on and speak about today because I know we have a huge amount of listeners. मुझे पता है कि बहुत लोग सुनते हैं हमारे इस सेशन को और दरमियान में दो ब्रेक्स भी ज़रा डिले हो गई हैं लेकिन दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज अगर हमने हमारे यंगस्टरों की इस तरीके से तरबियत नहीं की कि बड़े बूढ़ों का लुक आफ्टर करें तो फ्यूचर में जब आपकी बारी आएगी और आप उधर घर के अंदर होंगे वो आपका लुक आफ्टर नहीं करेंगे वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर बिजी होकर आपको छोड़ देंगे आप होम के अंदर चले गए तब तो आप उनकी नज़र से भी ओझल हो गए अब तो उस वाली बात है बूढ़े वाली के कई कई महीने गुजर गए और अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया लाइक द एल्डरली सेड टू मी दैट बीन आई हैव बीन हियर फॉर मेनी मेनी मंथ्स And nobody other than the medical staff have visited me. You're the first person. We don't want that to happen to our next elderly generation. We need to speak to our youngsters, talk to them, explain to them, take them to the elderly, instill the values of respect, love and connection with the elderly right from now. Otherwise, it could be that in some years' time, when you are frail and when you are weak and when you are vulnerable and you are at home by yourself as an elderly or as a weak or as an ill person, the family are too busy in their worldly commitments, cannot give you time, and you are lonely. And you are frustrated, and then you are transferred to a home where the little chance of anybody coming to you has decimated. And in the words of that old elderly person, it's been months and months, and nobody has seen me. And you have the same feeling as that our friend of ours who said, the best time of my week is when somebody can come and give me company. सबसे बेहतरीन मेरा वक़्त वो वक़्त होता है जब मेरे पास कोई आदमी आकर बैठ जाए अगरचे वो बात करे या ना करे लेकिन मेरे साथ वक़्त गुजारना हाउ मैनी हैव यू गॉट एल्डरली पेरेंट्स एल्डरली रिलेटिव्स और एल्डरली पीपल इन योर सोसाइटी दैट यू हैव स्पेंट टाइम विद कितने आपके साथ चाहे आपके बूढ़े वालिदैन हैं या रिश्तेदार हों या आपके इलाके के अंदर या जान पहचान हो या वैसे ही आपके इलाके वाले हों कमज़ोरी की वजह से वो उस हालत के अंदर पहुंच गए कि अब बाहर निकल नहीं सकते और आपने उनके साथ वक़्त गुजारा है या नहीं आपने उनको विज़िट किया है या नहीं ये आया अपनी रोज़मर्रा की बिज़ी ज़िंदगी के अंदर आपने अपनी तवज्जो ही उनसे हटा दी आपको पता ही नहीं है कि वो